0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना? जो से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य पे हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। संकल्प

विश्व की परिवर्तन

Abby. Ciao.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

essaye.

Adana.

Sa

Snake Saga.

Honorerende. Lägg jossa ner mig. Sissa ma siamo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

बन सकते।

Bobby.

Zettel. Sădai. Cărticelul.

अपार संसार दूसरा न कोई, इससे एकाग्र सिमट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चारों के बच्चों को दूर वालों को भी और नजदीक वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। जो पश्चाताप करके उसको खत्म कर, जमा नहीं करो। बाप दादा हरे का खाता देखे तो कैसे खाता हो, ओके।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मालिक सदा मालिक होते हैं।
2: कितने वर्षों से जुड़ा
1: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो अभी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सबकी बातें कहाँ गई।

समय भी
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इसरा बाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लूँ, ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय

Yeşçerdi. Abi. Same. Same pone que na desi. Mata.

परिवर्तन कराना चाहते। जो एक ही शब्द बार बार देवर पुरुषारत से शारती बना देते, और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए, दीवार पुरुषार्थ भी है कि देवर पुरुषार्थियों के लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देते। एक शब्द जान तो गए होंगे क्यों सब होशियार है। एक शब्द वो है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण सामने लाओ। कारण सामने आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता। तो बाप दादा संकल्प सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते। क्यों सोचने में बोलने में कर्म में आने में देवर पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाते। क्यों परिवर्तन के कार्य में साथी है। बाप के साथी है, बाप अकेला
विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण

क्यों का आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते तो शांति से साथ आप बच्चे भी मुक्ति दाता।

चर्चे तरों से आज तक क्या मांग

Shanti. Por te. Dek. So.

Chilate.

सुनने नहीं।

scholarship.

0: så köpte sin motorunge. Då slog han på motorkarsen. Avito den apretade den.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय और स्वयं

Enfin.

es algo que

Sembolra. लेकिन कहीं सोचते हैं

Sa

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्यूटी को रॉयलिटी, पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयलिटी कहा जाता है। तो अपने रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी आप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देख करके ही सब खुश हो जाते, चित्रों द्वारा भी जन्म सिद्धाधिकार पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस जनवरी मास को

0: बहुत संपन्न करता है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ बोल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yes.

सैंपल निकलने में।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Damn.

नहीं करनी पड़ती।

ます。

0: शक्ति सहज फरिश्ता बना दे। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिक बन की स्टेज
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: संतुष्ट है तो सब जो जमा हुआ स्व की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथारथ सेवा की विधि पहले भी बताई है, तीन बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वो सुना है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव भावना और स्वभाव बोल। अगर ये तीन बातों से एक बात भी कम है, एक है तो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि बेशक से पूछेंगे कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है, पेशेंट स्वरूप दिखा रही। बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य संस्कार पाठ बजा रहे हैं। बाकी जो भी सेवादारी सेवा करते हैं वो भी दिल से कर रहे हैं। इष्ट तार्स भी नहीं चल।

0: 喂，
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी चार के पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। शुभ भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, मारते है ना, तो बहुत मारने वाले भी माताओं के शुभ भावना से सेवा करने से वो बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती तो वो भी नरम हो जाती है, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदत खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे है, लेकिन माता जी इतना प्रभाव तो बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस, तो अनुभव करो ऑर्डर करने से स्थित हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के कौन थे, कौन है वो बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करे कि इनके नैन, इनके बोल, इनके वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको बाप दादा कहते हैं। बाप समान बनना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता समय की

0: साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरी ख्याल स्वप्न में भी आती, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस का आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर पास बाप दादा है, ये निमित्त मात्र उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बन के बहलाते, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल के डब्बी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट हो के रोस भी जाते हो, रोसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोसे हुए को भी मना आते, कोई बात नहीं बच्चे आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: में बाप दादा हर सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.

कैसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्थिति को व्यस्त समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में आप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे देखो कितने टीचर्स। चौथा हाल तो टीचर्स है,
2: 2000 टीचर्स आई है। 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप के school।

Brothers. Yeah.

Bulharsko. Sada. Mira baba. To su te jade. A mi babko. Čeri se Bye.

0: parte quieta. Cardiana.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: किसी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्म जीवन दी, तो ब्रह्म जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, याद है वायदा, याद है आका दिलाओ, याद है अच्छा दिला रे, अच्छा याद है पक्का कि कभी कभी भूल जाते हैं। जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही है बचपन का वायदा याद है, कितना सहज करके दिए। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार। परिवार में भी एक दो में आत्मक सने सने नहीं, आत्मक सने बाप दादा याद दिला रही है जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने पढ़े उमंग उत्साह से, बाप के आगे से कहा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है, तो दी हुई चीज बाप की अमानत रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी है ना कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहती है, रोरियान करती है ना, तो कहती है मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से, जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से। आप सभी तो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी नहीं भी करते बाप दादा अभी ये चाहे बच्चों का ही तो गायन है, हर कलप की है, तभी गायन है। क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को कलप करने जाओ वो बंधा हुआ है, योग मेरा है। तो बाप दादा इस

चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो व्यर्थ संकल्प बच्चों।

अपने

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ। सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे? बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट। तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुश दिमा रहे, खुश दिमा रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है। अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी। पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना। सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रेल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है। हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा।

0: स्पिरिट संकल्प करो तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना ही सी है।

Samacılar var. Trekkal tersi var.

Voll Knowledge.

इस संगम के जीवन

Sí.

Nice.

Sarabi. Moccasini. Legend Sarabi.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

संकर लैब में एकाकर होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो, एक ही संकल्प।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी डबल विदेशियों को यही भविष्य के लिए इशारा देती है कि अभी अखबारों की सेवा ज्यादा करो। फॉरेन के
0: शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Rage Bull.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

का वायुमंडल परिवर्तन करना है। अपने मन में किसी भी एक आत्मा के पृथ्वी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वो विश्व परिवर्तन

Sheesh.

परेशान

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी दे, बात तो आ भी दे।

0: जल डालने वाले आग बुझाने वाले। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों के, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
2: पापा याद प्यार देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sunday is something.

Sedio.

Sunday.

बीच में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ साथ ये परमात्म सने सदा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव कराता। सने में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन सने नहीं है तो फिर भी क्यों क्या का कोई चांस उठ सकते है? लेकिन सने So

मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने बना देता।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Το γύμνο.

सदा खुश रहेंगे। ये मत है जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है वो इस बारी हम यहाँ छोड़ के जाएंगे साथ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: संकल्प। सर्वशक्तिवान बनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी हैं, उन्हों को आजकल

Snake.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

किस रेतन में।

Push.

मुझे छोड़ना भी है और कुछ नया खोना। धारण Joe.

सदा रहे। ये विशेष ध्यान रखना, अपने दिल में कोई न कोई विशेष उमंग

shit.

Johnson.

जो छोड़ने चाहिए थे।

Jesus.

उसके लिए बाप दादा फिशिंग

Bacon.

Sugar.

三

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सुबह

shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सकते हैं ना, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम युगपत ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू याद करते हो थक गए अभी क्या करे, थको नहीं। साथ नहीं छोड़ो।

साथ नहीं होगा लेकिन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग एक तरफ What?

Poke.

once.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल चाय संसार में, चाय ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुतई दिलाएंगे, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नंबर 1 तो है अच्छे भी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

क्यों बना साकार पाठ परिवर्तन।

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहां पहुंच नहीं पाते क्यों? इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्द से जल्द बच्चों अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See you.

एक सेकंड, बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो, साइलेंस का संकल्प किया।

इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि पाप से दिल का सने की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी सने, सने नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनहरी

0: Vértice de भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह कि जिस समय आवश्यक उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे? परिवार का तो है ना, गिरे हुए को गिराओ नहीं। ओ मां को उत्साह बढ़ाओ, सुने का वायुमंडल बन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितने दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, सफल करो। खजानों को सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, समान संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मोरत बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ, चाहे सुख वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड, 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू दिखाती है। निर्णय की निशानी इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता, तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हट चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां मन को चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वो ही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है?
3: Shuffle.

समान बनने का और लक्षण रहे हुए।

मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण ये होता है, समृद्धि स्वरूप नहीं बने हो, सोचते हो
2: some

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज पाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो तन में हलचल हो प्रवृत्ति में हलचल हो सेवा में भी हलचल होती है तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दें। दर्द हो गया, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी के बारे की जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते। इसलिए हिम्मत वाले तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है। मदद

ti akhir yaad nahi karo baba madad kar hai lekin kiska to aata bhul jate ho aur aata yaad karte ho ki baba bhi pata nahi maratiyon ko hi karta hai hum ko to karte hi nahi hum ko to dekhte hi nahi pehle aap maratiyon piche lekin dil shikast nahi अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है ऐसे समय पर निर्णय शक्ति और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब तरफ अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो और धन भी नीचे ऊपर होता है जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग क्या हो उसके तो नहीं लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो सच्चे तो कैसी भी

sini karena kamu sih.

Formé bi kitkitoni jab

हार्ट में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्ट

रस्तीपन की सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं ये मेरा पन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करते, ये मेरा बनाता है ना तो सब बात मेरा। जहां भी आया वहां उत्ती का फेरा हो जाता है, बदल जाती। अगर उत्ती कहां भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा पन। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है। दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। हाँ ये बात है, क्या नहीं बनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर इसलिए इस दिवस को बच्चों के वार्धक्यता का दिन कहा जाता है। Yes, sir.

जैसे बच्चों की

0: Choco. Vicente. Suddenly get it on me. What done? Carbonar. Bandari ban.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो सदा खुशी के झूले में झूलती है, झूलते है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है, क्या नशा रहता है, हमारे लिए पाप है ना नशा। तो अपर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए पाप को माताओं पर बहुत प्यार है। और खास माताओं के लिए बाप आए, अच्छा खुश हो रहे, अच्छा। सदा खुश रहना, ऐसे ने अभी हाथ उठा रहे हैं। और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक का रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा।
2: हुई आत्माएं बातें हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चालीस वर्ष

कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का

що почитак. Койки камзорі. Тик. Васона. Yeah.

0: मन का टाइम टेबल बनाओ, कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करने पड़ेगी, हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति, अशुभ अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है, मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है। शुभ वायुमंडल जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे जिम्मेवारी, दृढ़ संकल्प करना है मुझे शुभ वायुमंडल बनाने। ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञता करेंगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी, ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी है, उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान के कार्य करने में मददगार बने। तैयार करो इंजीनियर्स को, चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे लेकिन रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, संबंध में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पांडवों का गायन क्या? पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, साथ भी रहे, साथी भी रहे। इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है? विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी।
2: Sunday.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प मात्र भी अगर किसी

Check.

सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों कुछ समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी कहते तो है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जब दिल से जो

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी को समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बक इसको बलि चढ़ाती है, बकरी को। बकरी को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

जन्मदिन पर आपको सौ

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे तो ये क्रोध का अक का फूल करो।

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिरार पर कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में ख्यानत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते, और कहते क्या है क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार, आत्माभिमानी में ये संस्कार नहीं है, है नहीं है ना? तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार करके कह के अलबेले हो जाते, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अंतकाल, जय जवान है, जय बूढ़ा है, जय तंदुरुस्त है, जय बीमार, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास साखी बनकर अटेंशन दो, चाहे कितने भी प्राकृत आत्माएं आपताएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरी पन की स्टेज आपको सहज और पाप का प्यारा बना देंगे। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रही है। क्या भी हो, सारे दिन में स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित। बाप समान बनना है, समान ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में साकार में कार्य कर रही हो। कैसे?

Some good luck share. Just kidding.

0: साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्रह्मन आत्माओं के सिवा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर एक बच्चे को चाहिए इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती है, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते, लेकिन खुश होते हैं दो प्रकार के बच्चे। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि ये मेरा वरदान है। लेकिन वरदान को फलीभूत करते, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते। बीज है लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान को फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पाने और धूप चाहिए, तभी फल निकलता। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने मन में वरदान का फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहती है कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो, बार बार स्मरण नहीं लेकिन स्मृति। ये पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, ये धूप लगन, तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

money.

So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज के दिन फर्श को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते।

सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को

Скорее вам один.

be my mentor.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाते हैं। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लेके, चाहे तीन दिन का प्रोग्राम कराओ चाहे एक दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य, लक्ष्य एक समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रख। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का, सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया जाए प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ, अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन मान धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है। अच्छा हाथ ला रहे जी, पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है।
2: मेरा पन है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

और

0: boneca cata chamana.
1: जमा करने का

Freddy. A baby. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार छत्र छाया

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोच के कहो, नहीं तो देखा बात फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देखा अब मां ये बहुत सुखियम मेरा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस है, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिन को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले बाहर के समान है क्या? बाहर से मात्र टकराने स्वयं किनारा कर लो। या उड़ती कला से उस झमेले के बाहर के भी ऊपर चल तो बाहर भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वही आएंगे ना। आप अमेरिका या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए, सेंटर बड़ी देने? झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से जाती, आ जाने दे देती।

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे it.

Jacoby, que saludo.

Kirawa. Morcea.

चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता

ऐसे समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान रिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना, तैयार हो। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी कर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब ज्वालामुखी योग शक्ति देने के लिए चाहे

Vanne. Yes.

0: नहीं, सहयोगी बन। हर एक को आप अटेंशन में रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा साथियों की विशेष सेवा करो। तभी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, किस लक्ष्य में धीवर पुरुषार्थी, ढीला पुरुषार्थी नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ये नहीं सोचो, ठीक होना ही है। यो बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। धीवर पुरुषार्थी बच्चों से।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लक्षण

Srah.

अच्छी तरह से कर सकते।

기억 상감이 조급한 위시시밥 가버다네 사팔다 아프가 자남세다

Secan Butika.

वचन करम समा

Et c'est les mamans.

0: शरद का समय, बहुत थोड़ा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सभी बच्चों का

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Suck.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, पाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन को समाप्त करो। ये सुख मैं बन अलौकिक जीवन में ये मैं बन दर्शनीय मुहूर्त नहीं बनने देता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं। और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले, इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदल रोज देखता रहेगा। बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दुनिया वाली कहती है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वो भी

Yeah.

Man.
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Show.

और अब घर चलना है। ये कानों में गूंजना चाहिए, बार बार अब घर चलना है। तो धुन लगा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तोड़े की अपने अपने है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में सम्मतम में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे सेवा ओ भगवत सासे कर रही है, ऐसे स्वयं को भी सेवा और विश्व सेवा।

अच्छा तो नहीं है ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है, कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपकी संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में करो तो इवॉलिटी, चलो 6 मास में नहीं तो 1 वर्ष तो है। हलचल में हिलना नहीं, अचल लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं ब्रह्मांड हिलावे, ब्रह्मांड और रुकावट बन के सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।
3: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Jesse Saints.

Iniciator, fellow, जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति से रात, रात से दिन, करके दिखाते तो क्या आप अपने सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते?

अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

Ha ha ha.

sit up.

Leonie.

चुप जाओ जैसे जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्म जीवन की मोक्ष सदा केयरफुल और केयरफुल मोक्ष बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले, निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना तो क्या कंट्रस्ट लिया है कि प्रकृति के मूड भी चेंज करे? प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। चेंज होती है कि नहीं? हाँ, होती है, कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंबाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए, ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक। वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखता है, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते। ऐसा खेल नहीं करो। क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते
2: में देखा तो बोल और कदम में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते त्यार है त्यार है। सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया ना, क्या करें। संकल्प का बटन लगा दो मुख पर, तेरे संकल्प का बटन तो है ना। क्यों पाप दादा को बच्चों से प्यार रहना साकार में जाके इनको

0: कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, छोड़ने की कोशिश करो। बाप को भी बच्चों पर फीत है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छाया के अंदर बैठे रहो, ब्रह्मन जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूला झूलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे समय पर आप मूर्ति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करती है ना। पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, शांति मिल गई फरिश्तों द्वारा, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाक अर्थात अंतम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतम वाहन
3: करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे, सकाश दे रही है, तब कहेंगे जो आप गीत बजाते हो ना, एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तिवान सुतैषित हो जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप मुझे व्यर्थ को जलाओ, चुन करके अपना बना।

0: स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना फॉलो फादर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं दे, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा। आपके हाथ में और देखा जाता it

Ay.

خوش.

Is it so tight?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नति की है, सर्विस

didn't.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।